जीवनयाता शीतलता जीवनयाता जीवित यही अलिना पेगु जीवन या पला पला किप्स एफएम छेगु जीवन या सदाय पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही मा अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवनयाता शीतलता की माँ जीवनयाता जीवित यही माँ अलेना पाँच छेगु जीवनया पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 PM।

0: Life-Changing Quotes. खुशी तब पाइन्छ जब तपाईं आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छोड्नुहुन्छ।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

तीस वर्ष देखि इन्टरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में सधैं छिटो वेल्डिङ मनसँग जोडिएको तार।

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: Joho Kips FM 98.3 MHz.
1: Raja Motiwa Moti Noyewa Ni Pushi Trang Gutu Kheli
2: Nepal Bhashaya Nyai Pushi Chong Meta
3: Suthaya Saadhe Chhani Se Saat Baje Taka Station Kips FM 98.3 MHz
4: किप्स 98.3 FM मा गजल संसार
5: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
4: गजल संसार
5: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी
6: हर एक शनिवार दिल की 10 बजे